बहनों और भाइयों, संगीत का सफर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में एक्सक्यूसाइटिस के बारे में बात करा था। आज के एपिसोड में आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन बात करेंगे उसी एक्सक्यूसाइटिस के बारे में। आइए दोस्तों, तो एपिसोड शुरू करने के पहले सुनते हैं ये गीत, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, फिल्म सूरज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

बहनों और भाइयों, किसी भी बीमारी की तरह अगर एक्सक्यूसाइटिस को अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो एक्सक्यूसाइटिस खराब हो जाती है। एक बार जब एक्सक्यूसाइटिस के शिकार ने बहाना चुना है तो वह इसके साथ चिपक जाता है और खुद को और दूसरों को यह समझने के लिए इस बहाने पर निर्भर करता है कि वह आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। हर बार जब पीड़ित बहाना बनाता है तो यह उसके अवचेतन के भीतर गहराई तक समा जाता है। जितनी बार वह इसे दोहराता है उतना ही अधिक विश्वास होता है कि यह पूरी तरह से सच है और यह असली कारण है कि उसे वह सफलता नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं ये गीत रसिक बलमा, हाय दिल क्यों लगाया तो से दिल क्यों लगाया। फिल्म चोरी चोरी, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

बहनों और भाइयों, एक्सक्यूसाइटिस विभिन्न रूप के प्रकट होता है। चार मुख्य प्रकार है एक्सक्यूसाइटिस के। पहला, स्वास्थ्य के बहाने। वे लोग वो होते हैं जो अपने स्वास्थ्य का उपयोग करते हैं और लोगों को यह बताते हैं कि उनके स्वास्थ्य के कारण वे सफल नहीं होते। बुद्धि के बहाने। दूसरा, वे लोग हैं जो बताते हैं कि दूसरों के पास उनसे ज़्यादा बुद्धि है, इसलिए वे सफल नहीं होते हैं। तीसरा, उम्र के बहाने। वे लोग हैं जो कहते हैं कि वे बूढ़े हो गए हैं और इसे एक बहाना के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि वह सफल क्यों नहीं होते। चौथा, भाग्य के बहाना। वे लोग होते हैं जो कहते हैं कि दूसरे उनसे ज़्यादा भाग्यशाली है, इसलिए वे अधिक सफल नहीं हो सकते। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। फिल्म चलती का नाम गाड़ी, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार SD बर्मन, और इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

बहनों और भाइयों, आइए अब बात करते हैं एक्सक्यूसाइटस का पहला बहाना। आपने सुना होगा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह 1000 अलग अलग रूपों में खराब स्वास्थ्य जो बहाना है, जो एक व्यक्ति जो करना चाहता है उसे करने में विकल्प होने के बहाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिम्मेदारी स्वीकार करने में असफल होना, सफलता प्राप्त करने में असफल होना, ये बहाना काम में आता है। दोस्तों, डॉक्टरों का कहना है कि व्यासिक स्वास्थ्य

के सही नमूना मौजूद ही नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी। फिल्म प्यासा, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार एसडी बर्मन, और इसे गाया है गीता दत्त ने।

बहनों और भाइयों, श्वास के बहाने के खिलाफ सबसे अच्छी दवाएं चार खुराकों में आती है। आइए अब इसके बारे में बात करें। पहला खुराक, अपने श्वास के बारे में बात करने से इनकार करें।

जितना अधिक आप अपनी बीमारी के बारे में बात करते हैं, यहाँ तक कि सर्दी जुकाम भी उतना ही बुरा होता है। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करना एक बुरी आदत है। यह लोगों को बोर करता है, यही नहीं यह व्यक्ति को आत्मकेंद्रित दिखाई देता है। सफल लोग अपने खराब स्वास्थ्य के बारे में बात करने की स्वाभाविक प्रकृति को हरा देते हैं। चलो दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, मिला है किसी का झुमका। फिल्म परख, गीतकार शैलेंद्रा, संगीतकार सलील चौधरी और इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

बहनों और भाइयों, अब बात करते हैं खुराक नंबर दूसरा। सेहत की चिंता छोड़िए, जितनी आप चिंता करोगे उतनी आप उसमें उलझ जाओगे। सफल लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं करते। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। फिल्म मधुमति, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी और इसे गाया है मुकेश।

बहनों और भाइयों, अब बात करते हैं खुराक नंबर तीसरा। वास्तव में आभारी रहे कि आपका स्वास्थ्य उतनी ही अच्छी है जितनी है। मुझे एक पुरानी कहावत अब याद आती है, मैं अपने लिए खेद हुआ क्योंकि मेरे जूते फटे हुए थे। मैं खेद करता रहा जब तक मैंने देखा बिना पैर का एक आदमी। इसीलिए अच्छा महसूस न करने की शिकायत करने के बजाय इस बात पर प्रसन्न होना बेहतर है कि आप जितने स्वस्थ हैं उतने ही स्वस्थ भी है, और अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी बने। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, ये बहारों के दिन ये सुहाना समा। फिल्म कुंदन, गीतकार शकील बडयुनी, संगीतकार गुलाम मोहम्मद, और इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

बहनों और भाइयों, अब बात करते हैं खुराक नंबर चौथा। याद रखें कि जंग लगने से काम करते करते खराब होना बेहतर है। जीवन का आनंद ले, इसे बर्बाद मत करो। खुद को अस्पताल के बिस्तर में सोचकर जीना मत छोड़ो। दोस्तों, अब मेरा जाने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे एक्सक्यूसाइटिस के बारे में। तब तक के लिए आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।